0: विद्रु अदृष्ट जे क्रमचार उस्तत संपूरण।
1: श्राक महला पहला पे पांडे साजे ना पे पुरोंगे एक ने दस समय एक चल रहे चढ़ एक ने हाली पैसन एक पर

सचिया पाटिया कोई नाम ना जा ने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दीर्घ आयु दी दात गुरसिखी जीवन बख्शना परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी जन्म दिन दे खुशियां वजों काकी परवीन कौर सुपुत्री सरदार कमलजीत सिंह जी बैंस नगर निवासी

बस चित है बसे। गुरु ग्रंथ पाशमान आप जी ने तरस के संबंधित पाशमान मदार कीर्ति निहादी पर सब आप जी तो कुटान संगता वालों गुरु प्यारे हो रहे बेअंत माया हाजर हुए पाशमान जी नाम जानी जान सतगुरु जीओ सबना दिया चर्दी कलाब सेवा लेके चलाना कारोबार जे वादे अपने दरों करो चर्दी कला उच्चा सच्चा जिन बख्शिश कर नवाजना सब यात्रा सब लिखा नहीं मारा

जय गुरु गुरु निवास अंतरजामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तख्त सतखंड दरबार दे हाजरा भरदे होए कीर्तन दे सत्कार जो संगतालो बिनत माया हाजर होए जिस खजाने विच माया हाजर कीती सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुरु सिखी वाला जीवन बसना दे अरक्ता बसनिया साहब सा संपूर्ण करनी यात्रा सफल करनी सिखो शब्द प्यारियो

0: जले हरि थले हरि उरे जले हरि हरि हरि हरि गिरे हरि गुपल हरि जिते हरि रे हरि गुपल हरि गिरे हरि गुहा हरि जमे हरि जमा हरि हरि हाले हरि अभे हरि अधरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि आजाद हरि पात हरि अमर हरि अमर हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि
1: ಭಾರತ

0: रूप देव भेवना जानहि जे परम वेद कथे जानहि जे परम वेद कथे पावहि नमसे जन छम करम छम से गौर का पार श्रेष्ठ नेत्र पुकार रे देव सत्र मुचार पुकार सर्व सत्र बता कर जप हि जे पद पद राग देव वाग हि ते जे आनंद राग आत्मा पद ते जन राम मंत्र नाम रे कर तंत्र मंत्र दीन सरे पावर रे ओम राज दे नाज राज प्रभी जन छम मंत्र देव दी हम न प्रण भक्त जन देव दर्शन प्रेम के
1: महासुर

प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्टि को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है।

चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन गोन किते दाम नीत मंगन दुजा फरन कण फणी फुंकारण जोध जिते सरदार विपर खण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो सी माखा सुर मर्दन भूमा कासल उर्धा धे दामनी प्रहासन सुछम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गोड़।

अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शोध मते फणियर फंकारण वाघ बकारण सस प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलन जय जय ओसी मैघा सुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विप्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज

संसृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमता हे एक वृते जय जय ओसी मैखा सुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काव रूप मारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंगणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय ओसी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटे निवारण दम उदाहरण तेज प्रकार खंड तुंत तवे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती याद नाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत पतापण जपत जिवे जय जय होसी सहस्र प्रकार खण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंत

तरबंग विचार जिम की हो आप करते पसार जद्दा बबू तन भय अनंत तव कहो जथा मत त्रण तंत करता करीम कातर कृपाल अद्वय अभूत अन भय दयाल दादा दुरंत दुख दुग रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत कई ऊच नीच की नो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरस सिवंत कई पलट सूरस सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय नाश सब रूप सोग ते रहत रूप अनभय काल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख

बनई एक धर्म जे सत्र मित्र तो एक सार अच्छा स्वरूप चल पार जानी न जाय जे रूप रेख कहे बास तास कहे कौन वेग कहे नाम तास है कवन जात जे सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र जहन नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंश तेज अन भिजदाग जल दल मही बंधन दुरंत जय नेत नेत निशिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोग तहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मानंद जय नेत नेत निशिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करें संतु बारक नीमन गारे पच बसु रघनाग नरादेव सर्व समय सबको प्रतपार है पोखत है जल मैथल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दुखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दुखन कदल दुजन के बल मैदल डारे खंड अखंड प्रचंड पारण पूर्ण प्रेम की प्रीत

मोहन रोग न शोक न भोग न भय है, देह बीन स्नेह सुबोधन नेह विरक्त अगे अच्छा है। जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे है, काहे को डोलत है, तुम रे सुंदर।

तो सौ सो पेट ही केवट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भे तुम्हें सब ही कर दयावे। भूमा काश पताल रसातल जच भुजंग सब है सरण्यावे। पाए सके नहीं बार प्रवाहू को ने तही नहीं तह वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिग से सब हो मिल गायो। वेद कतेव न वेद लखेव सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा बद सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह गो मन मै जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अवेद निर्वाण सब बचहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोग न संग तिहारे। याद अनाद गाद बेगद वैग जप्यो तिन ही कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिर कर बेस्त बोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है जोध के जतैया विरोध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल जावे गोर कर तेजी गुण गावे तेरे नाम है जोग जोग साध पौन साधना के तेग बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी गोरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है मरहटा मंगेल तेरे मन सो तपस्या करे दृढ़ वैद लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है रोह के रोहले मांग देश के मंगेले बीर बंग से बदले।

पायो सर्व धन दाम फल फूल से फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अवेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साधीन कहियत है। पाइये न पार दे

अदेवन को देव है कि शुद्धता को सार है, जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, क्या कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, गये श्री है नर है, विश्व को वर्ण है, गया पदा को हरण है, सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पर अवार हूं को पार जागो की जत विचार तो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गावे हम बसी हल पिधव पूर्वी न पार पावे या सतया नाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेव नादत अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मोहिया महाबाल के, राजन के राजा महाराज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है, दरैया द्रोम चाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छता नेर छपा कर कैसी छब काल इंद्र के कूल के, हंसनी सी सिहारो महीरा सी होसन बाद गंगा कैसी धार जली सातो सिंध रूल के, पारसी पलाऊ का ढरूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंग बादनी के रही झूल के, चंपासी चंदेरी गोड चांदनी सी चांदागढ़ गिर तत्ती हरी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंग बादनी के सोहियत है, हिमा से हिमालय हर हार सी हल्बा ने हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चांद्र गिर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार बकान सी बुलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी जगह दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है, भकरी कंधारी गोरे गखरी गर्द जचारी पौन के आरी तेरो नाम जाइयत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर में विराजे जहां जहां जाइयत है, पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की ग्रंथ साहिब महाराज जिया की पावन पवित्र बाजरा हजूरी और धन धन धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गोबिंद सतगुरु जी की बख्शी हुई पावन जी की विपर चल हुई पावन पवित्र धरती सतखंड हरिमंदर श्री सतगुरु जी की पावन पावन गुरु साहब जी ने कृपा की जुड़ बैठ करके प्राप्त करने वास्ते जथे संगत संगत जथे संगत

जाके बस है काम जाके बस है काम सो ऐसा हर जाइए सो ऐसा जाइए मेरे मेरे पाशा दे दर्दे पावना नारा दे दर्दे पावना शरदा नारा आनंदपुर साहिब की धरती आनंदपुर साहिब की धरती ते बड़ा भाई छज्जा

हां महाराज ये काम ते सौखा ही है। मैं पीर बुद्धू साह जी नु चिट्ठी फड़ा देंगा पर मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। महाराज कहंदे हां भाई तू पीर बुद्धू साह जी नु चिट्ठी फड़ा जी असी तेरे घर की गरीबी दूर कर दें। हां महाराज ये काम ते सौखा ये काम मैं जरूर कर देंगा। महाराज ने पत्रका लिख के फड़ाई भाई छजे नू फड़ाई भाई छजा सतगुरु जी नू नमस्कार करके ना वापस अपने घर नू तुर पिया। हुण रास्ते विच सढौरा नगर आ गया पीर बुद्धू साह जी दा उत्थे पहुंच गया जाके पीर बुद्धू साह जी नू मिलिया। पीर जी मैं आनंदपुर साहिब तो आया आ कलगीधर पातशाह जी ने तुहाडे लई चिट्ठी भेजी है। पीर जी ने चिट्ठी फड़ी फड़ के वो कागज अपने मथे नू लाया ताने कागज है जेड़ा धन कलगीधर पातशाह जी दे मुबारक हस्त कमलां विचों आया। आखो सतनाम धन है कागज। पीर बुद्धू साह जी ने जदों वो चिट्ठी खोल के पढ़ी ते भाई छजे नू कहिंदे छजेआ तेनू पता है चिट्ठी विच की लिखिया होया। कहिंदा जी मैनू नहीं पता की लिखिया मैनू ते जिवें महाराज ने फड़ाई उवें लिया के तुहानू फड़ाती। कहिंदे छजेआ चिट्ठी विच लिखिया आ जिहड़े सिख दे हत्थ असीं चिट्ठी भेज रहे आ ना पीर जी 6 महीने नू अपने घर रखणा जे ते प्यार नाल मन जे तां ठीक है जे नहीं रहूगा ते जबरदस्ती इनू अपने घर रखे 6 महीने नू जान नहीं देना पहरे तकड़े ला दियो पर सेवा खूब करे किसे गल की कमी ना रखियो सेवा विच सत्कार विच ये साडा प्यारा सिख। जदों पीर जी ने चिट्ठी विच पढ़िया सतगुरु जी का हुक्म सुनाया भाई छज्जा कहिंदा 6 महीने जे रहना हुंदा ते महाराज कोल ही रह पैंदा मैं ते जवाब दे के आया मैं नहीं रहना। पीर जी कहिंदे भाई जे नहीं रहना फिर जबरदस्ती रखांगे गुरु साहिब जी दा हुक्म ते हुण सानू मनना ही पैणा ना। जबरदस्ती भाई छज्जे नू अपने घर पीर जीआं ने रखिया पहरे ला दित्ते वी किते भाजी ना जावे खाणा पीणा हर तरह की सुख सहूलत बैठिया नू दित्ती जा रही।

नान जंतु पाए के संभाले सुमना जिन कृते कर ना किया चिंता पहे करने ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग ते सजो हारे स्वस्थ ते सत्य दिवा।